0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनु पर्ने, धेरै पछि के आइस त?
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनले पनि छोडेर गई, दुःखमा थिए आमै।
1: ए आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख केही कथा सुनाउँछु।
1: लो सुना सुना।
0: ल

0: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
1: सही है सही।
0: मजा ही मजा ब्रो। चलो शुरू करते हैं।

0: गर्मी कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख।
1: ऐसे ना तू देख परे दिल क्यों मेरा ब्रेक करे, लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे।
2: तेरे जैसे जाने कितनों के दर्द चखना चूर हुए।